जगावे। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे यात्रियों को देखा है जो किसी स्टेशन पर खड़े होकर बड़े शान से कह रहे हों कि हम तो राजधानी एक्सप्रेस से राजधानी जा रहे हैं। वे अपने कपड़ों और अपनी बातों से बड़ा रोब जमाते हैं, लेकिन जब कोई उनसे धीरे से पूछता है कि भाई जरा अपना टिकट तो दिखाइए, और क्या आपको पता है कि वहाँ आपका कौन सा घर है या किससे मिलना है, तो पता चलता है कि न तो उनके पास कोई टिकट है और न ही उस शहर में उनका कोई जानने वाला। वे केवल हवा हवाई बातों और भीड़ की देखा देखी उस यात्रा की दावा कर रहे हैं। धार्मिक दुनिया में भी ठीक यही तमाशा चल रहा है। हर कोई स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत या मोक्ष पाने के दावे कर रहा है, लेकिन कबीर साहब पूछते हैं कि जिस मालिक के घर जाने की बात कर रहे हो, क्या जीते जी उससे तुम्हारी कोई जान पहचान भी हुई है? कबीर साहब आज हमें इसी खोखले दावे और आत्मभ्रम का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। चलो चलो सब कोई कहें, मोही अंदेशा और, साहिब सु परचा नहीं, ये जाहिंगे किस ठौर। चलो चलो सब कोई कहे, मोही अंदेशा और,

और श्रोताओं, कबीर साहब के अंधे अनुयायियों की भीड़ को देखकर कहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे, हर कोई यह दावा करता फिरता है कि चलो चलो हमें तो मुक्ति के धाम जाना है, हमें तो स्वर्ग और परलोक की यात्रा करनी है। सब अपनी अपनी मान्यताओं की पालकी में सवार हैं, मोही अंधे सावर। लेकिन कबीर कहते हैं कि इस अंधी दौड़ को देखकर मेरे मन में एक दूसरा ही अंदेशा यानी एक बहुत गहरा संशय और चिंता पैदा होती है। वह संशय क्या है? अगली पंक्ति में कबीर उस भ्रम पर सबसे तीखा प्रहार करते हैं। साहिब सु परचा नहीं, जिस साहिब यानी परम पिता परमात्मा के धाम जाने का ये लोग दम भरते हैं, जीते जी उस मालिक के इनका कोई परचा यानी कोई आंतरिक परिचय, कोई साक्षात अनुभव या प्रेम का संबंध बना ही नहीं, ये जाहेंगे किस ठौर? तो फिर तुम ही बताओ कि मरने के बाद ये अज्ञानी लोग किस ठौर यानी किस ठिकाने पर जाएंगे? जब मालिक से पहचान ही नहीं है तो उसके महल का दरवाजा इनके लिए कैसे खुलेगा? दोहा अपरोक्षानुभूति और जीवन मुक्ति का महासिद्धांत है। वेदांत में माना गया है कि जो सत्य जीते जी अनुभव में नहीं आया वह मरने के बाद कभी नहीं मिल सकता। परचा कबीर के दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है चेतना का परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कबीर समझा रहे हैं कि केवल स्वर्ग की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि आपने इसी जन्म में इसी शरीर में उस परमात्मा की उपस्थिति को अपने भीतर नहीं जाना तो आपकी सारी यात्रा केवल एक भटकाव बनकर रह जाएगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी मान्यताओं कोई कसौटी पर कसिए। हम में से बहुत से लोग यह मान कर बैठे हैं कि हमने कुछ रस्में निभा ली, तीर्थ कर लिया या दान दे दिया तो हमारा परलोक सुधर गया। लेकिन क्या हमारे भीतर उस परमात्मा की कोई अनुभूति है? क्या हमारे दिल में उस साहिब के लिए कोई तड़प या प्रेम का परिचय भी है? आज कोशिश कीजिए इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर उस साक्षात परमात्मा से परिचय करने की। बाहर की बातों को छोड़िए और अपने अंतकरण में उतरकर उस राम नाम के प्रकाश को देखिए। जब इसी जीवन में आपका उस परम मालिक से परचा हो जाएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह परम धाम आपके ही भीतर साक्षात प्रकट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स से। भाई, जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़े और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना ज़रूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज़ करते हैं, और फिर तब तो अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि भी कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस

0: है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है, लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
1: तब भी हम वो ढूंढ रहे हैं।
0: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवा है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिसक्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिसक्वालीफाई किया। नवीं बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटालिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से, और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ दो या तीन मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं। वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करें, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
1: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवोल्यूशन। लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
2: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था, हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग। जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था। अभी बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज़ फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना। आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डिवेलप्स माई एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
1: एटीट्यूड चिंता वाला है,
2: हाँ, इसका ये एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो
1: मतलब मैंने एक बार एंग्जायटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी। सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा,
2: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन। अभी एटीट्यूड मतलब, लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है

0: वो उस क्वालिटी
1: रवैया
0: का
1: जिसे
0: बने।
1: कहेंगे।
0: हाँ, आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है, लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा, वो फिर मेरे एक्शन में आएगा। यू नो, इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माई एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे हैं। एंड यही अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में। जैसे भाई साहब ने कहा, कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है। अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात, तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। यू नो, कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड। लेकिन बना कैसे? Thought, feeling, attitude now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें you know my संस्कार, then it's not with one person,
1: मैं ऐसी ही हूँ।
0: हाँ, ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है। शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया, काम करवाया, तो घर पे भी बच्चों से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा। क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है। देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम, ये हर एक के साथ ये होगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो हर थॉट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व है। थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी। अब हम जाते हैं पर्सनालिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए? मेरी पर्सनालिटी चेंज कर दो, फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनालिटी विच इज रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से। आपको चेंज करना है कुछ भी, यू विल हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी, हर स्टेप पे मैं वो पर्सनालिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी, वो एनर्जी बाहर जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी, जब एनर्जी वापस आती है हम उसको डेस्टिनी कहते हैं। मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है, और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूँ तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट। द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है, चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली।
1: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं।
0: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है? वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे, जब हमें लॉ ऑफ कर्म समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूँगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा, मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है? जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है, तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से, तो भाग्य अपने आप, आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
1: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली,
0: दैट इज कमिंग बैक टू इन रिटर्न,
1: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया।
0: यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, तो थॉट्स की सोर्स क्या है? पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ध्यान से, कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे। गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें, इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है। सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी। तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा।
1: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारे और बाकी चीज़ों पर हैं सिचुएशंस, तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकती है।
2: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए,
1: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
0: उसको राइट में करना
2: मिलके, हाँ उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर ना भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई। फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
1: जो मैं 10
2: हाँ, जो 10 मिरर्स थे वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे। फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा, उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूँ, तो आत्मा में भी वजह आएगा कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
1: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें,
2: एक्चुअली
1: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगे घटनाएं।
2: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो, अगर कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
0: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीडिएटली,
1: क्योंकि याद नहीं रहता फिर,
0: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा है, क्यों नहीं लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन।
1: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जो बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
0: सी इशू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
1: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्री होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
0: Because we were not aware also, ना? हम देखे नहीं रहते कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है, ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी, हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है, सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट
1: इनोवेशन
0: क्रिएटिविटी।
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल।
1: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ,
2: बस एक ले लो फिर और सब कुछ
1: सारी हो जाएंगे।
0: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में, तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूँ, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रही हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग damage, I'm creating a damage, I'm creating an obstacle for my child's growth. तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन, बट why will I not be able to do that? Patience नहीं है कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है।
1: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसकी नहीं ली। इट्स नॉट दैट इजी। सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि वो सिचुएशन है वो। अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू। ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, जो हम
1: थॉट में जान है,
2: हाँ
0: एनर्जी तो
2: वही है ना। सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं वो अपने थॉट्स से देते हैं, तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है,
1: क्योंकि हमने उस पे जाके
2: देखा, एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ। कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल।
0: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है, अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है, दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, यू नो चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन। गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगे ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा। तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क। अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है, तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट। और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है। कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है।
1: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने,
0: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था। अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था, आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली वीसी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे। आज मेजॉरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है, यू नो जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को? मेजॉरिटी विल से यस,
1: सब बोलेंगे
0: यस। नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है? क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ, क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली। तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही, नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखिए तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स, नॉर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है। तो एलिवेटेड थॉट से ये केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: और इनमें कौन से थॉट्स शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स हैं?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है। सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूँ, स्किन कॉन्शियस नहीं हूँ, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूँ, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
0: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिजिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराए थे। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीज़ें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीज़ें परमानेंट हैं। बाकी सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्प्ररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा,
1: पीसफुली।
0: दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स वाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज देन।
1: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू। अभी तक जिस तरह से जैसे शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

आपल्या समोर कळू शाळा आपल्या समोर या ठिकाणी

चोरी मत करो, तेरी लोई मत काट जा, हिंसा मत करो, दारू मत पियो, रड्डी बाजी मत करो, अनेकी के मत चालो, गोर छोटे गोल करो, गुरु संस्कृति जतन करो।

घरे घरे में कल्लोल मचे, हड़ताल अठे पथराये।

चखावे। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे यात्रियों को देखा है जो किसी स्टेशन पर खड़े होकर बड़े शान से कह रहे हों कि हम तो राजधानी एक्सप्रेस से राजधानी जा रहे हैं। वे अपने कपड़ों और अपनी बातों से बड़ा रोब जमाते हैं, लेकिन जब कोई उनसे धीरे से पूछता है कि भाई जरा अपना टिकट तो दिखाइए, और क्या आपको पता है कि वहाँ आपका कौन सा घर है या किससे मिलना है, तो पता चलता है कि न तो उनके पास कोई टिकट है और न ही उस शहर में उनका कोई जानने वाला। वे केवल हवा हवाई बातों हैं। धार्मिक दुनिया में भी ठीक यही तमाशा चल रहा है। हर कोई स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत या मोक्ष पाने के दावे कर रहा है, लेकिन कबीर साहब पूछते हैं कि जिस मालिक के घर जाने की बात कर रहे हो, क्या जीते जी उससे तुम्हारी कोई जान पहचान भी हुई है?

कबीर साहब आज हमें इसी खोखले दावे और आत्मभ्रम का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। चलो चलो सब कोई कहें मोही अंदेशा और, साहिब सु परचा नहीं ये जाहिंगे किस ठौर। चलो चलो सब कोई कहे मोही अंदेशा और, चलो चलो।

श्रोताओं, कबीर साहब के अंधे अनुयायियों की भीड़ को देखकर कहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे, हर कोई यह दावा करता फिरता है कि चलो चलो हमें तो मुक्ति के धाम जाना है, हमें तो स्वर्ग और परलोक की यात्रा करनी है। सब अपनी अपनी मान्यताओं की पालकी में सवार हैं, मोही अंधे सावर। लेकिन कबीर कहते हैं कि इस अंधी दौड़ को देखकर मेरे मन में एक दूसरा ही अंदेशा यानी एक बहुत गहरा संशय और चिंता पैदा होती है। वह संशय क्या है? अगली पंक्ति में कबीर उस भ्रम पर सबसे तीखा प्रहार करते हैं, साहिब सु परचा नहीं। जिस साहिब यानी परम पिता परमात्मा के धाम जाने का ये लोग दम भरते हैं, जीते जी उस मालिक के इनका कोई परचा यानी कोई आंतरिक परिचय, कोई साक्षात अनुभव या प्रेम का संबंध बना ही नहीं, ये जाहेंगे किस ठौर? तो फिर तुम ही बताओ कि मरने के बाद ये अज्ञानी लोग किस ठौर यानी किस ठिकाने पर जाएंगे? जब मालिक से पहचान ही नहीं है तो उसके महल का दरवाजा इनके लिए कैसे खुलेगा? दोहा अपरोक्षानुभूति और जीवन मुक्ति का महासिद्धांत है। वेदांत में माना गया है कि जो सत्य जीते जी अनुभव में नहीं आया वह मरने के बाद कभी नहीं मिल सकता। परचा कबीर के दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है चेतना का परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कबीर समझा रहे हैं कि केवल स्वर्ग की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि आपने इसी जन्म में इसी शरीर में उस परमात्मा की उपस्थिति को अपने भीतर नहीं जाना तो आपकी सारी यात्रा केवल एक भटकाव बनकर रह जाएगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी मान्यताओं कोई कसौटी पर कसिए। हम में से बहुत से लोग यह मान कर बैठे हैं कि हमने कुछ रस्में निभा ली, तीर्थ कर लिया या दान दे दिया तो हमारा परलोक सुधर गया। लेकिन क्या हमारे भीतर उस परमात्मा की कोई अनुभूति है? क्या हमारे दिल में उस साहिब के लिए कोई तड़प या प्रेम का परिचय भी है? आज कोशिश कीजिए इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर उस साक्षात परमात्मा से परिचय करने की। बाहर की बातों को छोड़िए और अपने अंतकरण में उतरकर उस राम नाम के प्रकाश को देखिए। जब इसी जीवन में आपका उस परम मालिक से परचा हो जाएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह परम धाम आपके ही भीतर साक्षात प्रकट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स की। भाई जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़ें और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना ज़रूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज़ करते हैं, और फिर तब अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि भी कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करें और फिर उसके बारे में आगे हम सोचें तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम वो ढूंढ रहे हैं।
2: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवां है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिसक्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिसक्वालीफाई किया। नवीं बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटालिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ 2 या 3 मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करें, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवलेशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
1: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग, जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था। अभी बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती इट इज़ फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना, आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति

0: अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा.
1: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन. धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन. अभी एटीट्यूड मतलब लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन. हाँ आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है. लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा. यू नो इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन नाउ दिस इज माई एटीट्यूड तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे हैं. एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है. तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में. जैसे भाई साहब ने कहा कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है. अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. यू नो कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है. दैट्स माई एटीट्यूड. लेकिन बना कैसे? Thought, feeling, attitude now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person.
0: मैं ऐसी ही हूँ.
1: हाँ, ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है. शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया काम करवाया. तो घर पे भी बच्चों से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा. दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा. क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है. देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम. ये हर एक के साथ ये होगा. एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हर थॉट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी. ये मेरा व्यक्तित्व है. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी. अब हम जाते हैं पर्सनालिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर. क्या करने के लिए? मेरी पर्सनालिटी चेंज कर दो. फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनालिटी विच इज रेडी. स्टार्ट हुई थी थॉट से. आपको चेंज करना है कुछ भी, यू विल हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी हर स्टेप पे मैं वो पर्सनालिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी वो एनर्जी बाहर जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी. जब एनर्जी वापस आती है हम उसको डेस्टिनी कहते हैं. मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है. और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूँ तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है. भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट. द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर. क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है. चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली.
0: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं.
1: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कैसे वर्क करता है. वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे. जब हमें लॉ ऑफ कर्म समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूँगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा. मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है? जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है. तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी

0: थॉट की क्वालिटी से, तो भाग्य अपने आप आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
1: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली,
0: दैट इज कमिंग बैक टू इन
1: रिटर्न, मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया।
0: यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है तो थॉट्स की सोर्स क्या है। पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बहुत ज़्यादा ना पढ़े, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे। गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें, इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है। सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी। तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा।
1: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीज़ों पर हैं सिचुएशंस, तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकती है।
2: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए,
1: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
0: उसको राइट में करना
2: मिलके, हाँ उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर ना भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई। फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
1: जो मैं 10
2: हाँ, जो 10 मिरर्स थे वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे। फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा, उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूँ, तो आत्मा में भी वजह आएगा कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
1: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें,
2: एक्चुअली
1: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगे घटनाएं।
2: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो, अगर कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
0: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीडिएटली,
1: क्योंकि याद नहीं रहता फिर।
0: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा है, क्यों नहीं लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन।
1: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जब बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
0: सी, इशू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
1: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्री होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
0: Because we were not aware also, ना? हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था, कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है, ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट।
1: इनोवेशन,
0: क्रिएटिविटी
2: और कारण है कनुप्रिया बहन कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल
1: मैं कैसा फील कर रही हूँ कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ
2: बस एक ले लो फिर और सब कुछ
1: सारे हो जाएंगे
0: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है सी पेरेंटिंग स्ट्रगल जॉब स्ट्रगल हेल्थ स्ट्रगल हर चीज में तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूँ मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट क्योंकि वो थॉट बीज है ये पूरा उसका वृक्ष है बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी अभी हम निभा रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात शायद आई एम क्रिएटिंग damage. I'm creating a damage. I'm creating an obstacle for my child's growth. So that I have to question. But why will I not be able to do that? Patience नहीं है कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है
1: ओके अपनी जिम्मेवारी नहीं ली मैं कैसा फील कर रही हूँ मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसकी नहीं ली इट्स नॉट दैट इजी सी अगेन अभी भी मैं अगर सोचूं मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट तो वो थॉट जो है वो है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन है वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई वेट फॉर द सिचुएशन टू कम और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू ये चेंज कैसे होगा ये थॉट
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है जो हम
1: थॉट में जान है
2: हाँ
0: एनर्जी तो वही
2: है ना सिचुएशन आर लाइफलेस हम जो उसको लाइफ देते हैं वो अपने थॉट्स से देते हैं तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है
1: क्योंकि हमने उस पे जाके
2: देखा एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल
0: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं यू नो चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगे ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे पानी जैसे फ्लो होगा तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क अपने आप नहीं हो जाता है सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना किसी से बात करे बिना कुछ भी और करे बिना क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है
1: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने
0: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया नींद में भी वो चल रहा था अभी तो आंखें खुली सिर्फ इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते आप फील नहीं करते कि आप चार्ज्ड थे क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था आंखें बंद हो गई शरीर सो गया माइंड अभी भी चल रहा था सुबह जैसे ही आंखें खुली वी सी के वही सीडी बज रही है अंदर वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर वो रात भर भी बज रहे थे आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है यू नो जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को मेजोरिटी विल से यस
1: सब बोलेंगे
0: यस ना व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही नींद बहुत अच्छी होगी सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखें तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स, नॉर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है। तो एलिवेटेड थॉट से ये केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: और इनमें कौन से थॉट्स शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स हैं?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है। सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूँ, स्किन कॉन्शियस नहीं हूँ, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, शांति का खुट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूँ, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्पररी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
0: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिजिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराए थे। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीज़ें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीज़ें परमानेंट हैं। बाकी सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्प्ररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा,
1: पीसफुली।
0: दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज दैट।
1: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू।
2: ओम शांति।
1: अभी तक जिस तरह से सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति, या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो, उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट, लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

मत, कोई के भी पूजो मत, कोई के भी कमी चाहिए, भजे पूजे में गिर ढाले रिक्शा, कर्म करें सिखो, जान जो, सान जो, पचत समय मान जो,

चोरी मत करो, तेरी लोई मत काट जा, हिंसा मत करो, दारू मत पियो, रंडी बाजी मत करो, अनैतिक मत चालो, गोल छोटे गोल करो, गुरु संस्कृति जतन करो।

शिवा भयानक की होतो निसर्ग सोसो कोसे पडली वाटी वाटी पण जीव लागले नदी आता तो पाणी मध्ये झाले नदी के सिंह समीर भी झाले रबी आचा तणाव आले सारी मलकी एक कमल पलकी मुकली मना भागे गाडी कशी घरी घरी मनाई पडली पाना पाना ही झाले भाई भाई ये पकड़ोगी सासू बुढ़ी ये पकड़ोगी यारी ना बेटा भाई होए घरी घरी में कल्लू और बच्चे हड़ताल के लिए पता है

की तलाश में भटक रही हैं। हम धन में, मकानों में, रिश्तों में और पदों में ठहरना चाहते हैं, लेकिन हर जगह से अंत में खाली हाथ ही लौटते हैं। कबीर साहब आज हमें हमारी इसी भीतरी बेचैनी का असली कारण और एकमात्र स्थायी ठिकाने का पता बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। नमस्कार।